0: असल कलाकार मंगलूर प्रस्तुत करतात कोंगणी सामाजिक नाटक बोंगो बरोपी नेल्लू पेर्मानूर पात्र परिचय विल्सन डिसोजा कुलशेखर फेलिक्स लसरादो पेर्मानूर ऑलविन वेगस राजेश मिया पदव नेल्लू पेर्मानूर अनु बिजय ब्लेजी मोंतेरो शॉन रोड्रिगस कैनी डिसोजा डिंपल पिंटो दिव्या डिसोजा सेलिन डिसोजा संगीत सतीश सुरतकल पोदा वनिल वेगस फोटोग्राफी अनु बिजय तर बोंगो या सामाजिक कोंकणी नाटकसो मुखार सेल्लो वंटो या प्रसारांत ऐकोव्या.
1: बाबा

कान्या वाजें जालर गानों से वासे उस औरत को पांड वाजे पास नाचलो पांड बटा गई पांड बने तेरे तो पांड बने तेरे पास नाचलो

0: заработа. Аз тун тя гай на тиро стърне. Татя патла не си търи. Паля, туди гати, мъде бари за унчи на капута. Акаре. Дишти ка са бидистя. Пайшиля гуляк, давана сон сортя претан кари на капута. Сетля пранта си карта. Масатрик леканте. Аханг са сон кис паркеля рикану генати. Накаре пута.
1: अंकल पाप चेड़ आशेतना तुझे जीवित अच्छी दुरंत कानी ताचेर की त्याग बोलता है पाप फिरगस पर त्यान पात्र गेम का शेता तू चेदे ने ताचा रक्त तान वालों ने लाते कंडित तर तो ही नाम जिकता लोस
0: तर आऊं शिकाय ना कोने इंसाइ सलार शिकों दित
1: तू क्या दारा समाज ताएगी विनिल ये हाँ तो कपाल शिकेता।
0: अरे ना अरे ना। पहले हैं गरावा संध्या शर्ट बदलो ने। हाँ। नाका नाका। इसे ने। अनीते दोनों शर्ट कहीं कहीं मात्य अंतलालों ने कलर मगे रावण संभली जे। पढ़ा। ये शर्ट कनेक्शन दे।

0: असल कलाकार मंगलूर, प्रस्तुत करता कुंगनी, सामाजिक नाटक बोंगो, बरोपी नेल्लू पेर्मानूर, पात्र परिचय विल्सन डिसोजा कुलशेखर, फेलिक्स लसरादो पेर्मानूर, ऑलविन वेगस, राजेश मियापदो नेल्लू पेर्मानूर, अनु बिजय, ब्लेजी मोंटेरो, शॉन रोड्रिगस, कैनी डिसोजा, डिंपल पिंटो, दिव्या डिसोजा, सेलिन डिसोजा, संगीत सतीश सुरतकल, पौधा वनिल वेगस, फोटोग्राफी अनु बिजय। तर बोंगो या सामाजिक कोंकणी नाटकसो मुखार सिल्लो वंटो या प्रसारांत ऐकव्या।
1: ए टेनिसा अजे कान फुटले दिसता, ए टेनिसा अजे डापोन बसल्या जायना, जोर नीती येता बरो दिया वस्तू बरं झाली कळणार।

0: तो कर रे, तुका काम नहीं, तुका काम हाँ कर देता, तुम्हें कहीं औषध कहीं भी होती गरज ना सारी पकड़ गया तू कहीं रे तू मुझे संगत आसा है अब एक तू ये सरो पीन उलोन आये उलोन तू संगत आसा है तू कहीं बेना खरीद गई गरीन से तुका काम हूँ कर देता कहीं बेना खरीद गई
1: काम मेला ना
0: डोंट वरी आई एम हियर नो फियर
1: मिलचे ना गी
0: चेकी तुका काम मिलता रे तू कहीं बेना करे तू मत निटलो तू हलो ना का तू हलो ना तो तू निटलो आज सही है तुका काम हूँ कर देता
1: राइट वाम
0: बेरे समा यो जाने समा मतलब ये का हमें पैसे कान गेल ना मुनी संग ना का
1: पार्टी दिता है ना मामा
0: कोना कोना की केदारा केदारा किते किते जाऊं का सागी देन साइजेस मामा
2: केली से ना
0: वे
2: बंगला मुनी गेल लाई
0: बंगला
2: बंगला नहीं पाकिस्तान बंगला
0: ना क्या मिले
2: कल्याण सफर मोड़ लो देखो नहीं साथ ले
0: ओ कल्याण सफर मोड़ ते कमर ना चाहिए साकिल लो डेनिस सामा ते फंडा वही राग में शनाग मुने तो ना दान टोनो फंडा वही रिपोर्ट लो तो जो कहीं कल्याण सफर मोड़ अस्त
2: ब्रेड ले मात तू मर ना जा मिसा गेल ले ये का दवेला मर ना उन्हें गेल ले तेरा पड़ा पंडा बितार तू बटे पड़ना बारिशा रही रहती पहले सातु क्या ऐसा क्यों बेजार कर रहा है तू ये एक सड़क रे सड़क
0: सड़क
2: नहीं
0: सड़क
2: सड़क मिले रे था मरे बु
0: सड़क सड़क
2: सड़क
0: हाँ ये क्यों सड़क कितना होने
2: सड़क कहता वाले सुवीस वाले उत्कालस था
0: सड़क सुवीस वाले उत्कान था तर हम
2: तू सड़क
0: ये मकाम का ये मकास जाओ
2: पहले से ये हम कौन अंदर नटला है
0: कौन है अंदर नटला हाँ वो असो उड़ा सा के मकाम नहीं डरी समा तू है कमाक जान जाए मुल्ला ही
2: वही
0: जान रेडी
2: अरे कितने हुआ का माइंड से चल रही है सो कंडक्टर करना मुन्ना
0: ना बा
2: तू का बात है अरे काम आंग बुर्गा लाय मिले हैं मुझे फूटा जा का जरा बोले तंत्र का जा रहा हूँ ना तंची बाई लाता बड़ा नंगा इधर बंटी मुसो के रहता जरूर सफ़ान है रे
1: मामा तो शेमुना ना का मामा समर ना का एक जवान मिला प्रो मामा कस तर निदो की ना का हंगा से बाहर कहीं पुनी सोपेर निपता मामा
2: ये नाम की ते मनाई
1: इच्छु
2: यप्पा कहाँ ले रे इच्छु की सोरापु कर जूता ले चकुलिया सह रहे हो कहीं गड़र का नोन नटले रहा का
0: तू का नाम समा समझा ही नहीं रे
1: स्टीवन
0: इच्छु इतना रियो पास ही नहीं तू
1: स्टीवन इच्छु मना पैदा
2: स्टीपन
1: स्टीपन नहीं स्टीवन
2: ओ स्टीवन मुझे एक लो दोस्त या सोरा सहयार करता वरना स्टीवन इतने बड़े नाम खंगे नो इच्छु सोरा पु खंडोड़ी खंडेर नाम ये पुटी बिया लो रे हमें सुरेल को नहीं बुरा जाऊं दे ये काम कंचन रही तू काम
1: कंचन बुरा सा मामा
2: सब बस
0: बारी बड़ा सा हटला क्यों नो काम काला सा उन्हीं सार ले बड़े
2: गधा कंचन ही नहीं रहा तो शे नहीं रहा पा बाहर थोड़ा चंगा मासा भी तेरे घर चंगा मासा तू क्या कंचन जाई थे
1: दोनों करता मामा
2: वेरी गुड कीप इट अप हाँ
1: ना कहा की मामा
2: वो आका इंग्लिश है ना स्टार है
0: ना ते ने उसे कहता उसे कहता
2: लान लान इंग्लिश पर शिकाय जब बता शिकाय जे शिकाय जे शिकाय जे नहीं शिकाय जे आऊं थोड़े शिकाय था मागे थोड़े तो शिकाय
0: तो शिकाय
2: ये नटले मात्रों साजे जाऊं ये शीत निस्तंगर रहती
1: करता मामा
2: निस्तें कितें करता है
1: निस्ते आमलेट करता सार करता
2: काल रे माका होंकोच्या खातीर हाडला रे का
0: ना बकरी
2: आमलेट करता सार करता ताज्या उपरांत सगळें रांदय सासावन घालून तुका सांबार घालून
1: तें करता मामा
2: कंडी तूं सोडी ना म्हाका होंकोच्या खातीर ताटले घेवन बेली जाता
0: ना बा करीत करीत
2: जावं दी वस्त रुमल्यात गे
1: उमलता मामा
2: कशें सेट जायत गे रे जण बेलीसा
0: जण फस्ट क्लास जण फस्ट क्लास एका वर्साची गॅरंटी हांव दिता
2: काय मोबायल सेट पळय आशा हांगा येता
0: कोणा कोणाक केदळा केदळा कितें कितें जावंक आसा गे
2: आजे एक
0: तें जायचे
2: अळवता कामांक भुरगो जाय म्हणून तुमच्या काजारा पयले या बँकला लागी सांगले तो आता अण्ण आयला पण अण्ण आयला पण ना पुता असो न्ही ताका भितर रावची व्यवस्था कर वसरे भितर वसरे
3: घरचे सगळे काम हांवच करता ना पण त्यान जण कित्याक डिस्टन्स करसाक वाट
1: ना बाय करसाक वाट जायना बाय सांभाळ नाका एक जेवण म्हणल्यार पुरो घस जाता तर न्हिदो की नाका बाय
2: सोप्यार न्हिदता काय उता तो बाप हांवें ताचे कश्ट आयकोणूच बाय जायत म्हणल्यार ना तर आतां कामांक जाणाची गरज कितें नाका म्हणोक म्हाकाय बेजार जाले नाका म्हणल्यार ताका बेजार जाता व्हडना पुता भितर आपोवन आसून ताका रावची वेवस्था कर कांय खावंक दी पुता वसरे भितर वसरे
0: कोणा कोणाक केदळा केदळा कितें कितें जावंक आसा गी ते जाय
2: तुजे एकच केदळ पळयता दुसरें कामूच नाका.